0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने

विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के

0: अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज सांभळीय विचार बिंदु आतिथ्य पठन करी रह्या छे भावना माकड।
2: विचार बिंदु
3: अथर्वेद मां बतावियु छे के अतिथि सत्कार करनारना पाप धोवाई जाय छे। आतिथ्य शब्द अतिथि परथी आव्यो छे। अतिथि एटले के जे व्यक्तिनी आववानी तिथि नक्की नथी, जेनु आगमन अकल्पनीय छे, एवी व्यक्तिनु अचानक अणकल्प्यु आगमन थाय त्यारे ए ज क्षणे जे भाव प्रगटे छे ते छे साचो आतिथ्य भाव। भारतीय संस्कृति अने भारतीय धर्ममां आतिथ्यने गृहस्थाश्रमनु कर्तव्य बतावियु छे। जे गृहस्थ अन्य धर्म कर्म नथी करी शकता તે ગીતાજીના કર્મયોગ મુજબ આંગણે પધારેલા વ્યક્તિનો યોગ્ય સત્કાર કરે એ અનિવાર્ય બતાવ્યું છે। જે ઘરે કંચનના મેહ વરસતા હોય પરંતુ આંખમાં સ્નેહ ન હોય તે ઘરે કદી પગ ન મૂકો। યજમાન અને મહેમાનનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત કૃષ્ણ ભગવાને પૂરું પાડ્યું છે અને આતિથ્ય ધર્મનું સમાજ સામે પણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે। ચીનની એક સ્થાનિક કહેવત છે જેનો ભાવાર્થ છે કે જો કોઈ ઘરમાં સ્થાન આપે તો તે ઘરે જવું, પણ માન આપે તો એ ઘરે ફરીથી જવું। આતિથ્યને મનની લાગણી સાથે સીધો સંબંધ છે। લાગણી પારાશિષ્ય છે અને મનમાં ચાલતા વિચારો અરીસો બનીને તરત જ બહાર આવે છે।
2: વિચાર બિંદુ
1: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા વિચાર બિંદુ આતિથ્ય પઠન કરી રહ્યા હતા ભાવના માંગડ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી। હવે સાંભળીએ ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના।

नाग भुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

0: दीक्षान्तसमारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नैनगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिमबंगालराज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथमपुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नैनगरे इकोस् ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचनकार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिलायात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागदनिर्मितपाटलचटिकाव्यवस्थायाः अवधिः अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बसयात्रायै महिलाः डीटीसी अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बसयानेषु कागदनिर्मितपाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारम् आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिकापर्यन्तं 54 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 में 1 युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी

नेट, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

0: नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policy.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a 2-day visit to Tamil Nadu beginning today. During the visit, he will participate in a series of academic, commemorative and literary events in Chennai, Chengalpattu, Tiruvarur and Tanjavur. Today, Mr. Radhakrishnan will attend the 22nd convocation of the SRM Institute of Science and Technology in Chengalpattu. He will also attend the first death anniversary function of former Governor of Nagaland, Manipur and West Bengal in Chennai. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has notified the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme Rules 2026. It enables eligible taxpayers to declare certain undisclosed foreign assets, undisclosed foreign income or undeclared foreign assets on payment of a specified tax or fee. The scheme will come into force from today and the last date for filing a declaration under the scheme is 31st of December this year. The National Testing Agency NTA will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET ICAR All India Entrance Examination for it admission.

0: આકાશવાણી ભુજ બરાબર 8 કલાકે સમાચાર પ્રભાત દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: યાર સચ બતાઉં, અભી તો ગરમિયા શરૂ હુઈ હૈ ઓર 7-7 હજાર રૂપિયે કા બિજલી બિલ ભી આને લગા. વાઇફ કબ સે બોલ રહી હૈ સોલર પેનલ લગવાને કે લિયે, બોલતી હૈ સરકાર સબસિડી ભી દે રહી હૈ. મેને જિનકો પૂછા સબકા બિજલી બિલ ઝીરો આ રહા હૈ, ઇસ બાર તો લગવા હી દેતા હું. જબ બિજલી મુફ્ત મિલતી હૈ તો લે ક્યું નહીં રહે ભાઈ, આપ ભી લગવા હી દો. પીએમ સૂર્ય ઘર મુફ્ત બિજલી યોજના જુડને કે લિયે રજિસ્ટર કરેં pmsuryaghar.gov.in.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की. इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा. अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा. 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न. सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की. और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है.
4: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे.
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है.
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं.
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं. उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया. श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की.
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है. और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके

0: महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माता और बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं,

0: पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के

0: साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अख्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी

0: हेलो आकाशवाणी भूज।
1: गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है, हो मुबारक आपको स्वतंत्रता दिवस। उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा ने दिल से ये पैगाम भेजा है।
0: वाह वाह, आपको भी स्वतंत्रता पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आपको और आकाशवाणी परिवार को और तमाम सुनने वाले साथी भाइयों बहनों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी धन्यवाद।
1: दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही पर बातों का सिलसिला रखना, चूलो तुम आसमां को ये मेरी तमन्ना है, पर हम तक धवनी ताल की तरंगों का ये रास्ता याद रखना। तन्वी बहन।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप।
1: बस आप ही के साथ में रह के थोड़ी बहुत सीख गए हूँ।
0: जी जी, लिखने का शौक है आपको?
1: पहले लिखता था, अब नहीं लिखता। अब तो उनको जो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में फिट है, कभी कभी उनको गुनगुना लेता हूँ। आज 15 अगस्त है
0: जी,
1: सुबह से अभी तक मैंने एक नगमा नहीं सुना।
0: ओह हाँ हाँ, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम ही 15 अगस्त है।
0: हाँ,
1: इसी का टाइटल सॉन्ग है आज

0: अगस्त है।
1: जी जी बिल्कुल सुना देते हैं।
0: ये गाना में तीन जो मेरे दिल के बेहद ही करीब रहते हैं उनके साथ में सुनना चाहूंगा
1: जी,
0: और उन्हीं को ही डेडिकेट करूंगा, जिसमें सबसे पहले आप हैं,
1: धन्यवाद,
0: और सेकंड नंबर पर हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है, और तीसरा आकाशवाणी बुद्ध सुनने वाले सभी साथी भाई बहन।
1: वाह वाह जी, बिल्कुल सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी

0: हेलो, कौन है अपनी पसंद?
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, बहुत दिनों के बाद आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। आज करीबन 1 महीना से ऊपर हो गया होगा दीदी।
0: ओहो, हाँ हाँ
1: जी। तो दीदी मुझे आज गीत सुनना है देश प्रेमी फिल्म का, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और स्वतंत्रता दिवस है दीदी, तो सबको पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे और आकाशवाणी परिवार को भी दीदी।
0: जी जी, और आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी दीदी धन्यवाद बहुत बहुत कॉल रिसीव करने के लिए।
0: जी जी, और सुना देते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो, आकाशवाणी भुज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भुज।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: तमिलबेन
0: जी, महेंद्र भाई।
1: यस।
0: हाँ, और खान पड़ी गई।
1: जय श्री कृष्ण बेन।
0: जय श्री कृष्ण। केम छो?
1: केम छो? बस बस आनंद। आपने आशीष बेन बेन होना।
0: जी जी।
1: हाँ जी हाँ जी। बेन एक गीत सांभळो छे।
0: हाँ हाँ।
1: फिल्म से प्रेम कहानी। अने मारी साथे मारा मित्र है दिव्य मूठ, मारा पत्नी श्री नंदिन बेन चौहान
0: जी,
1: मारी दीकरी अंकिता नितिन परमार मानकुआ, मारो दीकरो जय चौहान
0: जी।
1: आपनी आज्ञा हो तो बे लाइन गाई ने संभळावुं आ गीत ने।
0: चोक्कस चोक्कस, एना वगर आ फोन कॉल अधूरो छे।
1: કલાકાર તો નથી, લલકારવાનું મન થાય.
0: ના ના, બહુ સરસ. જી જી.

0: आँख में गजरा क्यों नहीं बांधा, बालों में गजरा, तुम्हारी जुल्फ उड़ेगी तो गटा छा जाएगी, गटा छा जाएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। आमीन।
1: चौकस चौकस संभावी दी है।
0: हाँ बस आपने खूब खूब आवाज
1: ઓકે।

0: कशन भुज।
1: हाँ जी आकाशवाणी भुज।
0: हेलो।
1: हाँ जी
0: हाँ कशन भुज शंकर लाल राहवाणी हम से बोल रहे दीदी।
1: हाँ हाँ कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है
1: जी। जी बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे जी?
0: हेलो।
1: हेलो
0: आपका नाम?
1: मैं तन्वी मेहता बात कर रही हूँ।
0: अच्छा तन्वी मेहता कैसे हो?
1: बढ़िया।
0: आज मेरे गाना सुनना है।
1: जी जी
0: मेरे विशेषण उसका आज पुण्यतिथि है।
1: हाँ हाँ
0: 19 तारीख को।
1: जी
0: इसके लिए गाना सुनने का है।
1: जी कौन सा गाना?
0: कांची रे कांची।
1: हाँ
0: हाँ फिल्म का नाम खबर नहीं, कांची रे कांची।
1: हाँ गाना समझ में आ गया जी।
0: हाँ ये गाना सुना है दीदी?
1: जी जी बिल्कुल सुना देते हैं।
0: और थोड़ा नाम दे सकता हूँ?
1: जी बताइए।
0: एक बसंतीलाल सूर्यवंती मध्य मंसूर भावेश ठाकुर वैधानी ठाकुर धीरज रबारी अनिल भाई देसाई निवला और एक गांधीनगर से सूरज भाई राठौर। बस
1: जी जी तो सबको सुना देते हैं।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ જસપાલ સિંઘ અને હેમલતાનું યુગલ સ્વર. ગીત છે ફિલ્મ નદિયાં કે પારનું.

0: जेम्स ऑफ इंडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को एक राष्ट्रीय मंच देना है। इस पहल के माध्यम से उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को मिलेगा अवसर, जिलों की संस्कृति, विरासत और पर्यटन को मिलेगी पहचान, युवाओं की रचनात्मक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय कहानियों का बनेगा राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह और हर जिले में विकसित होगा एक मजबूत क्रिएटर इकोसिस्टम।
1: શ્રોતા મિત્રો, આપે ટ્યુન કર્યું છે આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર અને આપ માણી રહ્યા છો વિસરાતા સુર કાર્યક્રમ। કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ આ ગીત। ફિલ્મ છે આરઝુ અને કલાકાર છે લતા મંગેશકર।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की

0: 12वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ-साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support each challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Nabin were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience

नमस्कार मेरे फौजी दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम में आप सबका, मैं आपकी रेडियो दोस्त मोनिका त्रिवेदी तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे कई बातें और सुनेंगे बहुत ही सुरीले नगमे। आज है 16 अगस्त। दोस्तों, आज के दिन 1970 में मशहूर भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता ऐसे सैफ अली खान का दिल्ली में जन्म हुआ था। उनके पिताजी मंसूर अली खान पटौड़ी के जो एक क्रिकेटर थे, और माता शर्मिला टैगोर की जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आइए सुनते हैं कई सारी बातें, पर पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी उन्हीं पे फिल्माया गया ये गाना। फिल्म है तारा रंपम, जिसे गाया है के श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी ने। संगीत दिया है विशाल शेखर ने और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

दोस्तों, सैफ अली खान ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत 1993 में फिल्म परंपरा से की थी। उन्होंने फिल्म दिल चाहता है, कल हो ना हो और हम तुम जैसे फिल्मों से अपनी बड़ी पहचान पाई है। हम तुम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिला है। आइए सुनते हैं सलाम नमस्ते फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है शान और गायत्री अय्यर ने। संगीत दिया है विशाल शेखर ने और इसे लिखा है जयदीप सहानी ने।

0: दोस्तों, अभी आपने हम तुम फिल्म से ये गाना सुना। इसे गाया था अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। सैफ अली खान ने अन्य लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि रेस, लव आजकल, कॉकटेल और तानाजी जैसी फिल्में इसमें शामिल है। दोस्तों, यहां मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक।
1: जेम्स ऑफ इंडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को एक राष्ट्रीय मंच देना है। इस पहल के माध्यम से उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को मिलेगा अवसर, जिलों की संस्कृति, विरासत और पर्यटन को मिलेगी पहचान, युवाओं की रचनात्मक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय कहानियों का बनेगा राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह और हर जिले में विकसित होगा एक मजबूत क्रिएटर इकोसिस्टम।
0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र और आप सुन रहे हैं फौजी दोस्तों का ये खास कार्यक्रम जय भारती। दोस्तों, आज है 16 अगस्त। आज यानी कि 16 अगस्त 1970 को काठमांडू नेपाल में मनीषा कोइराला का जन्म हुआ था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिताजी प्रकाश कोइराला एक राजनेता है। उन्होंने अपना अभिनय करियर नेपाली फिल्म से ही शुरू की थी, पर बॉलीवुड में उन्हें 1991 में सुभाष गाई की फिल्म सौदागर से बड़ी सफलता मिली। आइए सुनते हैं उन पे फिल्माया गया ये गाना, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म है 1942, अ लव स्टोरी। संगीत

दोस्तों, उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी के साथ साथ बॉम्बे, अकेला, अग्नि साक्षी, खामोशी, गुप्त, द हिडन ट्रुथ, दिल से, कंपनी जैसी कई फिल्मों में अपना अभिनय दिया है। आइए सुनते हैं बॉम्बे फिल्म से ये गाना जिसे गाया है चित्रा ने।

दोस्तों, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को मात देके उन्होंने ये बात जता दी कि अगर आप किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच से करते हैं तो आप कोई भी जंग को जीत सकते हैं। आइए सुनते हैं खामोशी फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।

क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रही हूं महान देशभक्त ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की। दोस्तों, आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जो एक प्रखर राजनेता, ओजस्वी वक्ता एवं संवेदनशील कवील थे। वे तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और देश के राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। उनके नेतृत्व में 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ, जिसने भारत की रणनीतिक क्षमता को बहुत ही मजबूत किया। उनकी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सहित देश के सड़क एवं बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति की। वे हिंदी भाषा और साहित्य के प्रबल समर्थक थे तथा उनकी कविताएं आज भी व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया। ऐसे महान देशभक्त को मेरा कोटि कोटि नमन। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म है मैं अटल हूं, इसे गाया है जुबिन नौटियाल ने, इसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है पायल देव ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
1: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष

0: पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से

नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज हम जो गीत आपको सिखाने जा रहे हैं उसका भाव अर्थ है, भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से सदा से एक रहा है, आगे भी एक सूत्र में बंधा रहेगा और हम मिलजुल कर देश का विकास करेंगे। विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम अपनी एकता के बल पर अवश्य ही दूर करेंगे। गीत लिखिए, गीत के बोल हैं, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। क्या लिखा?
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, यह स्थाई है। पहला अंतरा लिखिए, अंतरे की पहली लाइन है, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे। दूसरी पंक्ति है, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमको हमको रोक सके ना कोई, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। मैं पहला अंतरा दोबारा पढ़ता हूँ, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। लिखा?
1: जी सर।
0: आप पढ़िए पहला अंतरा,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं।
0: ठीक है, यह पहला अंतरा है। इसके बाद हमारी स्थाई आएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। दूसरा अंतरा लिखिए, हम किसी से कम नहीं। क्या लिखा?
1: हम किसी से कम नहीं।
0: हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तीसरी पंक्ति है, एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं, हम सब बड़े दिलेर हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ दूसरे अंतरे को, हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं। क्या लिखा आपने? आप पढ़िए,
1: हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: ठीक है, यह था दूसरा अंतरा। इसके बाद फिर स्थाई आ जाएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। लिख लिया?
1: जी सर।
0: अब तीसरा अंतरा लिखिए, जीवन सरस बनाएंगे, जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे। तीसरी पंक्ति है, कोई मानव दुखी रहे ना।

0: कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी टेर है। लिख लिया
1: जी सर।
0: अब मैं पढ़ता हूं, आप देख लीजिए। जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी टेर है। ये था हमारा तीसरा अंतरा। फिर हमारी स्थाई आ जाएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: अब मैं पूरा गीत पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हम एक हैं,
1: हम एक हैं,
0: हम एक थे,
1: हम एक थे,
0: हम एक रहेंगे,
1: हम एक रहेंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
0: आगे बढ़ते जाएंगे,
1: आगे बढ़ते जाएंगे,
0: हमको रोक सके ना कोई,
1: हमको रोक सके ना कोई,
0: हम वायु का वेग हैं,
1: हम वायु का वेग हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: दूसरा अंतरा है, हम किसी से कम नहीं,
1: हम किसी से कम नहीं,
0: हमें किसी का डर नहीं,
1: हमें किसी का डर नहीं,
0: एक एक मिल ग्यारह होते,
1: एक एक मिल ग्यारह होते,
0: हम सब बड़े दिलेर हैं,
1: हम सब बड़े दिलेर हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: जीवन सरस बनाएंगे,
1: जीवन सरस बनाएंगे,
0: धन धान्य उपजाएंगे,
1: धन धान्य उपजाएंगे,
0: कोई मानव दुखी रहे ना,
1: कोई मानव दुखी रहे ना,
0: ऐसी सबकी टेर है,
1: ऐसी सबकी टेर है,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: लिख लिया आपने ये गीत
1: जी सर।
0: अब इस गीत को सीखते हैं,
2: तो गीत शुरू करें
3: जी। जी सर।
2: ये गीत ताल कहरवा में निबद्ध है, तो हम पहले इसका स्थाई सीखते हैं। स्थाई सास

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान के अलवर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद से देश भर में कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों की अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एजेंसी ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने

0: अंतिम तिथि 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्माण क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। पुदुचेरी में आज डी ज्वेरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवायम ने किजूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज नेपाल की 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडी खेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया। इकाई ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्रह्माणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बांगल नदियों के उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 408 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं ममता खूबचंदानीअ खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। NTA हिन साल जून में मुंतजिम थियल UGC नेट इम्तिहाननि जे 84 सब्जेक्ट्स जे लाइ प्रोविजनल जवाबी कुंजी तयारु कयूं। झारखंड में GPSC JSSC इम्तिहाननि में गैर रीतियुनि ख़िलाफ़ मुजाहिरो करे रहियल शागिर्दनि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जे इस्तीफ़े जी घुर कई। राष्ट्र अॼु अॻूणे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खे उन जी पुण्यतिथि ते श्रद्धांजलि अर्पण करे रहियो आहे। भारत मंगल ॾींहुं नई दिल्लीअ में ब्रिक्स मुल्कनि जे माहौलियात मंत्रियुनि जी 12वीं बैठक जी मेज़बानी कंदो ऐं BWF विश्व बैडमिंटन चटाभेटी सुभाणे खां नई दिल्लीअ में शुरू थींदी। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जी धरतीअ ते बांग्लादेश जी पहिरीं जीत। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हिन साल जून में थियल UGC नेट इम्तिहाननि जे 84 सब्जेक्ट्स जे लाइ प्रोविजनल जवाब कुंजी जारी कयूं वयूं आहिनि। उमेदवार 18 अगस्त ताईं इन्हनि जवाबनि खे चैलेंज करे सघनि था। हिकु रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक UGC नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। NTA ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। NTA ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी।

0: झारखंड में भर्ती इम्तिहाननि में मुबाइना ग़ैर रीतियुनि सबबि शागिर्दनि जो विरोध मुजाहिरो वधीक वधी वियो आहे। हिकु रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र अॼु अॻूणे प्रधानमंत्री ऐं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पुण्यतिथि जे मौक़े ते खेन श्रद्धांजलि अर्पण करे रहियो आहे। गृह मंत्री अमित शाह चयो त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बणिजण खां अॻु लंबे वक़्त ताईं मुख़ालिफ़ धुर में रहिया हुआ। तंहिं हूंदे बि हुन कॾहिं बि सिद्धांतनि सां समझौतो कोन कयो ऐं इहो ई कारण आहे त उन खे अजात शत्रु चयो वेंदो आहे। श्री शाह इहा ॻाल्हि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पुण्यतिथि ते अॼु राजस्थान जे चित्तौड़गढ़ में हुन जी मूर्तीअ जी रहनुमाईअ वारे मौक़े ते चई। श्री शाह चयो त क़बाइली क़ौम कार्य वजरात जी स्थापना श्री वाजपेयी जे ई कार्यकाल में थी हुई। हुन जी पहल सबबि जनजातीय बिरादरियुनि जे कल्याण जे लाइ केतिरा ई कार्य थिया, जंहिंखे मौजूदा सरकार बि अॻिते वधायो आहे ऐं केतिरा ई तवारीख़ी फ़ैसिला वठंदे जनजातीय माण्हुनि जी दिलचस्पी ऐं हक़नि जी रक्षा कई वई। श्री शाह अॼु अलवर में केतिरनि ही विकास योजनाउनि जो महूरत ऐं संगे बुनियादु रखियो। गृह मंत्री अमित शाह चयो त साल 2047 ताईं भारत खे विकसित राष्ट्र बणाइण जे लाइ नौजवाननि, मिसकिननि, औरतुनि ऐं कुर्मियुनि खे बा इख़्तियार बणाइण ज़रूरी आहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऐं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ श्री वाजपेयी जी पुण्यतिथीअ ते दिल्लीअ में संदसि यादगार सदैव अटल ते गुलहार अर्पण कया। इन मौक़े ते अॻूणे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा जे उपसभापति हरिवंश, लोकसभा सरबराह ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्लीअ जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऐं भारतीय जनता पार्टीअ जो सरबराह नितिन नवीन पिण हाज़िर रहिया। मर्कज़ी मंत्री मनोहर लाल बि इन ते हाज़िर रहियो। ही समाचार तव्हीं आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। मुख्य समाचारनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। ही समाचार तव्हां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। भारत मंगल ॾींहुं नई दिल्लीअ में ब्रिक्स मुल्कनि जे माहौलियात मंत्रियुनि जी 12वीं बैठक जी मेज़बानी कंदो। सुभाणे इन वाबस्त पर्यावरण कार्य मेड़ ऐं माहौलियात बदिलाउ तोड़े लगातार विकास संबंधी राब्ता मेड़ जे अमलदारनि जी बैठक थींदी। हिकु रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान अॼु खां 15 सेप्टेम्बर ताईं खुलियल रहंदो। केरलम जो सभ खां वॾो उत्सव त्रिउवणम 26 ऑगस्ट ते मल्हायो वेंदो। उत्सव खे खणी तमामु उत्साह जो माहौल आहे। अॼु अथम सां राज्य में ओणम जी शुरूआति थी वई आहे। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले जी मंडी तहसील में आयल प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर जी 12 ॾींहनि जी सालियानी श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा सुभाणे खां शुरू थींदी। श्रावण महीने में थींदड़ यात्रा 28 अगस्त ताईं हलंदी। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जे महाप्रयाण ॾींहं ते गृह मंत्री अमित शाह उनखे श्रद्धांजलि अर्पण कई। सोशल मीडिया पोस्ट में हुन साहिब चयो त जदीद भारत ऐं अजीम वीचारक ऐं माता कालीअ जे परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय सनातन रिवायत जी गहरी ताक़त ऐं रुहानी चेतना खे हर माण्हूअ ताईं पहुचायो। BWF विश्व बैडमिंटन चटाभेटी सुभाणे खां नई दिल्लीअ जे इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू थी रही आहे। इहा चटाभेटी 23 अगस्त ताईं जारी रहंदी। भारत ॿियों दफ़ो इन चटाभेटीअ जी मेज़बानी करे रहियो आहे। अचो त ॿुधूं।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: मुख्य समाचार एक भेरो बेहर वरी बुधंदा। NTA हिन साल जून में मुंतजिम थियल UGC नेट इम्तिहाननि जे लाइ 84 सब्जेक्ट्स जे लाइ प्रोविजनल जवाबी कुंजी जारी कयूं। झारखंड में JPSC JSSC इम्तिहाननि में गैर रीतियुनि ख़िलाफ़ मुजाहिरो करे रहियल शागिर्दनि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जे इस्तीफ़े जी घुर कई। राष्ट्र अॼु अॻूणे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खे उन जी पुण्यतिथीअ ते श्रद्धांजलि अर्पण करे रहियो आहे। सिंधी समाचारनि जो इहो अंक हिते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। नमस्ते।

0: भागते हैं, उससे दूर रहते हैं। और मैंने अभी गुजरात टूर में देखा, हम गुजरात में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर थ्रेट है कि सड़कें नहीं बन रही हैं, विस्तार बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसका रहने का क्षेत्र कम हो रहा है।
1: सबसे एक विस्तार में थी बीजा विस्तार में जो है ना ग्रुप पड़ी है,
0: हमारा इंसान का विस्तार बढ़ रहा है, हमारे जानवरों का विस्तार कम
1: हो रहा है।
0: तो ये सिर्फ गोह के लिए नहीं, बहुत सारे प्राणियों के लिए सत्य है कि जैसा जैसा हमारा विस्तार बढ़ेगा उनका विस्तार कम होगा।
1: सही है।
0: बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां स्पीड में जा रही हैं। स्पीड में जाने से, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं रोड किल, सड़क पे मौतें होना, तो पिछले 15 दिन में मैंने खुद अपनी आंखों से 3 मौतें देख ली गोह की।
2: अरे बाप रे।
0: तो ये जो सड़क पे मौतें होनी है, कभी कभी क्या होता है कि गर्भ व्यवस्था में होती हुई गो एक जगह से दूसरी जगह खाना लेने के लिए जब जा रही होती है उसकी सड़क पे मृत्यु हो जाती है। तो हम एक गोह तो मृत्यु हुई, साथ में उसके जो बच्चे होते हैं क्लच वो भी चला गया। तो हमने आज की एक मौत तो देखी और साथ में आने वालों की भी हमने मृत्यु देख ली। दूसरी बात है हमारी जो डेजर्ट गो, कहा ये जाता है, पहले कहा जाता था जो हमारी डेजर्ट की गो है वो पूरा ईरान पाकिस्तान से लेके 3-4 प्रजातियां, सब प्रजातियां जिसको बोलते हैं। हमारी जो डेजर्ट की प्रजाति है, हमें अनुमान है ऐसा कि शायद वो नई प्रजाति हो सकती है। तो यहाँ पे आता है गुजरात के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप, क्योंकि ये प्रजाति अगर नई अनुवांशिकी से कंफर्म हो गई, अगर हमारा IUCN SSC मॉनिटर लिजर्ड का जो ग्रुप है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये प्रजाति नई है, तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा विद्यार्थियों के लिए उसके ऊपर काम करने के लिए। जरूरी भी है, क्योंकि जब नई प्रजाति आएगी तो हमको जानना है कि नई प्रजाति रहती कहाँ है, उसका रहने का जगह जिसे हम माइक्रो हैबिटेट, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसको क्या क्या चाहिए रहने के लिए, उसकी जनसंख्या कितनी है। नई प्रजाति जब आ जाएगी तो हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ रहती है, उसके ऊपर कितने थ्रेट है, उसको क्या, किन किन चीजों से हानि हो सकती है, वो हमें अभी ठीक से नहीं पता है। फिर उसको अगर हानि है या उसका रहने की जनसंख्या वैसे ही कम है, तो हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्कोप होगा, जो कि जैव विविधता में काम करना चाहते हैं वो गोहों का संरक्षण कर सकते हैं, जो कि एक गो हमारे भारतीय जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये सूची एक में है, जैसे शेर एक में है, बाघ एक में है, मोर एक में है, ये भी गोपण एक में है। तो सर्वोच्च प्रोटेक्शन भारत सरकार ने दे रखी है, तो अगर उस पर कोई काम करना चाहे, अगर मान लीजिए आपका कभी सिंह का पॉपुलेशन, मतलब सिंह का जनसंख्या कम हुआ, तो हमको लगता है ना कि हमारा शेर कम हो रहा है, तो हमें ऐसा गोह के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हुआ डेजर्ट रेगिस्तान का तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रन का एक अलग भूगोल है, वहां की जरूरतें अलग है और वहां के जानवरों को ये चेन में बहुत काम कर रहा है, वहां की इकोसिस्टम चेन में, क्योंकि वहां के जानवरों को आपस में एक दूसरे का डिपेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, खाने के लिए, रहने के लिए, अपना बरो जो वो मिट्टी का बरो बनाते हैं उसका उपयोग के लिए, इन सब चीजों के लिए, हाँ, जो बनाते हैं इन सब के एक दूसरे की उपयोगिता, अगर एक भी कम हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा पूरा हमारा इकोसिस्टम।
2: तो डॉक्टर कुमुदिनी, ये जो आपने गो बोली, चंदन गो ने पाटला गो जो बात करी, तो वो जहरीली होती है?
0: नहीं, ऐसा मान्यता है कि जहरीली होती है, बट ये दोनों ही गो जहरीली नहीं है।
2: अच्छा, वो काटती भी नहीं और उनसे कुछ हमें दिक्कत भी नहीं है।
0: अगर हम बहुत ही करीब चले गए, मान लीजिए गलती से हमारे बच्चे खेलते हैं, बच्चे कई बार हम बहुत बार अगर करीब चले गए तो इनके कुछ सिग्नल होते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम गुस्से में तो हम बताते हैं ना कि भाई अभी हमसे दूर रहो, हमें अभी गुस्सा आ रहा है, तो एक हिस साउंड निकालते हैं, हिस।
2: अच्छा,
0: ऐसे करके एक वार्निंग देंगे कि हमसे दूर रहिए। हिस निकालने के बाद अगर और फिर भी आप गलती से पास गए तो अपनी पूंछ हिलाएंगे, जो जोर जोर से मारेंगे कि हमसे दूर रहो।
2: अच्छा,
0: अगर वहां बच्चे बच्चे होंगे, अगर मादा हुई, अगर फिर मादा नहीं हुई या नर हुआ, तो वो पहली बात तो आपसे

0: वो दूर भागेगा। पहला उनका रहेगा आपसे दूर भागेगा, पर वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही होगी, आसपास कहीं उसके खुद के बच्चे होंगे, तो हिस साउंड निकालेगी, पूछ हिलाएगी। तो आपके पास ये तीन क्यू है कि आप उससे दूर हो जाओ,
1: दूर हो जाओ।
0: फिर भी अगर गलती हो गई कि मुंह पे पड़ गया, अगर काट लिया, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। जैसे कुत्ते के काटने से इंजेक्शन लगते हैं,
1: अच्छा,
0: वैसे ही इनके काटने से एक दो इंजेक्शन लगेंगे और आप आराम से आ सकते हो।
2: मतलब रेबीज के हड़कपनी चिंता खरी है।
0: जैसे बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल लोड जिसे हम साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे, साइंस में, कि इनके मुंह में सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, कोई वेनम ग्लैंड नहीं है। तो ना जब विष की थैली ही नहीं है तो विष निकालेंगे,
1: जहर इतनी थैली नदी तो जहर करे।
2: पर એટલે કોમોડો ડ્રેગન માં તો આપણે જોઈએ છીએ કે એ કોઈ પ્રાણી ને કરડે તો ત્યાં એનો પગ સડવા માંડે, એટલે એવું આ ઘોમાં થાય ખરું?
0: હા, જૈસે કિસી પ્રાણી કો ખાયા ઉસમેં હો ગયા બેક્ટેરિયલ લોડ, બેક્ટેરિયા અપને આપ મેં મલ્ટીપ્લાય કરતા હૈ, બઢતા હૈ, બઢતા હૈ। ઓર એક જાનવર જબ મર ગયા, કોઈ ભી અગર નોર્મલ ભી, અગર રોડ એક્સિડેન્ટ ભી હો ગયા, જાનવર મર ગયા, તો ઉસમેં ભી વહાં પે મક્ખી આને લગતી હૈ, મેગેટ આને લગતે હૈ, વો ભી સડને લગતા હૈ। તો જો આસપાસ કે બેક્ટેરિયા સડન, જો જો ડેથ કે બાદ વૈસે ભી ડિકમ્પોઝિશન કા ટાઈમ જો હોતા હૈ, યે નેચરલ પ્રક્રિયા હૈ,
2: બિલકુલ।
0: तो ये इसके काटने से ही हो रहा है, इसको रिलेट करना गलत है। तो उसके जो, जैसे कोमोडो ड्रैगन की आपने बात करी, वो बड़ा प्राणी है, बड़े प्राणी में ज्यादा बैक्टीरिया है, क्योंकि अगर वो और ज्यादा बैक्टीरिया, क्योंकि वो बड़े प्राणी का मारण करता है, तो उसको मारने के लिए और ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए। हमारे पास जो गो है वो छोटी है, छोटी प्राणी का मारण करती है।
2: अरे उसका खुराक भी मेरे ख्याल से कोई प्राणी तो नहीं है ना, बड़े प्राणी है,
0: प्राणी है। हाँ। उसका खुराक में आपके आगे केकड़े हो गए, छोटे छोटी मछलियां हो गई, सांप हो गए, तो स्तनधारी हो गए छोटे छोटे, तो इन सबको खाते हैं, चिड़िया
2: मतलब
0: खाते हैं,
2: ससलू छे, चकली हो छे,
0: छोटे छोटे प्राणी खाते हैं। देखिए ये जो सरीसृप है ये एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं, अगर जैसे सांप हो गए, सांप भी बहुत सारे बच्चे एक साथ देते हैं। सांप को खाने के लिए कोई जानवर नहीं होगा तो सांप की जनसंख्या ऐसी बढ़ेगी कि कोई कंट्रोल नहीं होगा।
2: सच्ची बात।
0: और अगर गोह भी बहुत सारे बच्चे देता है, गोह को मतलब बड़े सांप छोटे गोह को खाते हैं, और बड़ा गोह छोटे सांप
1: छोटे सांप कर रहा है,
0: तो ये आपस में एक दूसरे का जनसंख्या का कंट्रोल रखता है।
2: जीवस्यम भोजनम।
0: तो ये जो हमारी जनसंख्या नहीं तो ऐसी बढ़ती जाएगी कि कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।
2: सही बात।
0: तो इनका खुराक है जो छोटे छोटे जानवर आसपास हो गए, सांप हो गए, दूसरे गो हो गए, हो सकता है कि आपको बंगाल वाला जो नॉर्मल एक पाटला गो आपका चंदन गो का बच्चा खा जाए, बड़ा चंदन गो पाटला गो का बच्चा खा जाए, एक दूसरे की जनसंख्या। वरना ये तो बड़े प्राणी है, इनको हम स्कैवेंजर भी कहते हैं, ये शिकारी और स्कैवेंजर है। अगर ये इनकी जनसंख्या मेंटेन नहीं होगी तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बढ़ जाएगी।
1: और गोभी ये सब छोटे छोटे पशु पक्षी खा जाते हैं,
0: छोटे छोटे छोटे छोटे जो जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, या छोटे स्तनधारी भी खाते हैं।
2: खास करीने तमे स्केवेंजर कहू एटले जे मृत पशु जितला होय ने एने खाए एटले सफाई थाय, नहीं तो वातावरण में गंदगी थाय, वातावरण में बेक्टेरिया फैलाय।
1: जीवता ना खाए, मृत वधारे
2: खाए, मृत ने वधारे खाए।
0: हाँ, जैसे आपके वल्चर हो गए, वो भी सफाई, हम बोलते ना सफाई कर, गिद्ध जो है, ऐसे ही इनका भी काम है। अगर कोई डेथ है तो उसको साफ साफ कौन करेगा? अगर वो नहीं रहेगा तो वहीं सड़ेंगे, वहीं बीमारियां फैलेंगी। तो साफ सुथरा रखने का काम है। मान लीजिए कृषि प्रधान, जो कृषि जिनकी है उस जगह अगर हो गया, तो ये बहुत अच्छा एक काम करते हैं कि ये चूहे है, छोटे स्तनधारी, छोटे छोटे जानवर खा लेते हैं जो आपकी कृषि को हानि करते हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड की जरूरत ही नहीं है,
1: ये तो जरूरत ही नहीं है,
0: नेचुरली ही रोडेंटिसाइड का काम कर रहा है।
2: એટલે એક ખેતરમાં જો માનો કે ઘો હોય તો તમારે ઉંદરની દવા નાખવાની જરૂર નથી,
0: કારણ
2: એ ઘો ખાઈ જશે ઉંદર,
1: અને હોય છે લગભગ ઘો હોય છે ખેતમાં।
0: હા, ખેતમાં હે, અગર ઘો હે તો માનીએ આપકા જો યે ઉંદર આપને જો બોલા યે નહીં આયેંગે, ઉસકા ઉસકો ખુરાક મિલ ગઈ ઓર આપકા ખેત ભી હાની નહીં હુઆ। તો ઇન સબ ચીઝો, યે જો અગર આપકે આસપાસ હૈ, દો ચીઝે દેખને લાયક હૈ, અગર યે આપકે ખેત કે આસપાસ હૈ તો આપકી ખેતી કે નુકસાન નહીં હૈ। હા, આપ को देखना है कि कहीं इनके अंडे वगैरह हैं, तो थोड़ी जगह छोड़ देनी है थोड़े दिन के लिए. एक बार बच्चे निकल गए तो आराम से वो भी चला जाएगा और आपका भी खेत सही रहेगा. तो थोड़ा सा दूरी बनाने की जरूरत है, अदरवाइज ये ऐसा कुछ अटैक

0: કિંગ નેચર નહીં.
1: અને ઉંદર જેમ અનાજને નુકસાન કરે એવું ઘોના તો ખોરાકમાં છે જ નહીં, એટલે અનાજને તો નુકસાન કરવાની જ નથી ને.
0: અનાજ મેં કોઈ નુકસાન નહીં, ક્યોંકિ યે પ્લાન્ટ નહીં ખાતે, ઇનકો જિનકો હમ હર્બીવોર કહેતે હૈ, તો એસા ઇનકા કોઈ પેડો કી ખોરાક નહીં હૈ. તો કૃષિ મેં નુકસાન નહીં કરતે, બલ્કિ ઇનકો હમ બોલતે હૈ કૃષિ મિત્ર.
1: અચ્છા,
0: હમ ઇસકો બોલ સકતે હૈ હેલ્પર હૈ યે.
1: એટલે જેમ સાપ છે ખેડૂત નો મિત્ર છે, એમ ગો પણ ખેડૂત ની મિત્ર જ કહેવી પડે.
0: હા, તો યે આપકે મિત્રતા હૈ કે અગર સાપ હૈ આસપાસ તો ઉનકો ભી જ્યાદા હો ગયે સાપ તો ઉનકો ભી ખા રહે હૈ, તો કહીં ના કહીં આપકા હી બચાવ હૈ ઇનસે.
2: ફિર હમારે બોલતે કે કાચિંડા હોતા હૈ, તો વો કાચિંડા ઓર ગો એક હી કુલ કે હૈ?
0: કાચિંડા આપ હમે બતા સકતે હૈ કૈસે દિખતા હૈ? ક્યોંકિ
2: લિઝાર્ડ જૈસા બડા.
1: નહીં નહીં, વો इसे क्या कहें, लाल रंग हो जाता है,
2: ग्रीन हो जाता है जिस पर रहता है
0: वो. इसको कैमेलियन बोलते हैं. नहीं, हाँ, हाँ. दोनों अलग अलग जीनस में आते हैं. हाँ. अगर हम देखें पर हैं सरीसृप ही. एक बहुत बड़ा थ्रेड जो मैं गुजरात में गोह का बोल रही थी, जिसके लिए हम बहुत ही चिंतित हैं. इसका जननांग है जो नर गो है, उसका जननांग हत्ताजड़ी के नाम से बिकता है. हत्ताजड़ी के नाम से बेचा जा रहा है, और हमने इस पे शोध किया था. तो ईबे, स्नैपडील, अमेजोन बाहर ये $1500 तक बिक रहा था. तो जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि हत्ताजड़ी को हमारी पूजा सामग्री के साथ रखने से हम સ્વસ્થ રહેંગે, હમારા ધનધાન સહી રહેગા.
1: બટ એને એની સાથે શું લેવા દેવા?
0: કુછ નહીં. બટ તો જો હત્તાજડી થી વો હોતી થી એક પેડ કા જડ, જો અભી ઇતના રેયર હો ગયા હિમાલય મેં, વો મિલતા નહીં હૈ. બટ યે જો ગોહ કા જો જનનાંગ હૈ, જો નર કા, વો ઉસ હત્તાજડી જૈસા દિખતા હૈ. તો इसका बहुत ज्यादा उपयोग पूरे भारत में बढ़ा हुआ है. भारत क्या, भारत से बाहर भी. तो इस पे हमारे अगर श्रोता अगर कभी भी किसी को भी हत्ताजड़ी जैसा कुछ मिले तो उसको पेड़ की जड़ नहीं समझना है.
2: क्योंकि वो है ही नहीं है.
0: वो है ही नहीं,
2: हिमालय में है और कहीं कहीं पर ही है.
0: तो आप समझिए कि अगर आप पेड़ की जड़ समझ के एक शेड्यूल वन जानवर का, एक तो पूजनीय जगह पे पहली बात तो उसको रख रहे हैं, और दूसरा उससे एक जानवर भी मृत्यु हो रही है. और गोह को आप नर और मादा ऊपर से नहीं पहचान सकते. तो इसका जननांग निकालने के लिए इसको पकड़ के इसका पूंछ के पास का एरिया जलाना पड़ता है. तो अब इसका जननांग निकल के आता है. तो अब अगर नर हुआ तो मिल गया, मादा हुई तो मादा मर जाती है.
2: मर जाती है.
0: तो इससे नुकसान हमारा बढ़ता ही जा रहा है.
1: અને એ વનસ્પતિ માનો કે હશે તો પણ ઉસકા ફાયદા તો કુછ હૈ નહીં.
0: કુછ નહીં ઉસકા ફાયદા.
1: હત્તાજડી કા ફાયદા કુછ નહીં હૈ.
0: અગર આપ હત્તાજડી ઇસ ટાઈમ આપકો માર જો બિક રહા હૈ વો બુદ્ધુ બના કે હત્તાજડી આપકા ગોહ કો બેચ રહે
1: હૈ. સાચી વાત. એટલે તમને મૂર્ખ બનાવે છે ને, ખરેખર એનો ફાયદો કઈ નથી.
2: કઈ નથી.
0: તો યે हमको पूरा हमको ध्यान देना है कि आपको हत्ताजड़ी नहीं लेना है, क्योंकि मूर्ख बनाया जा रहा है. वो एक एक हमारा प्रोटेक्टिव जो भारत ने, जो हमारा गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है, तो वो जानवर भी मर रहा है, कम भी हो रहा है, बेच भी रहे हैं उसका.
1: गैरकायदेसर व्यापार अच्छे.
0: हाँ, 1000-2000 से लेके 20000 तक बेच भी रहे हैं, ये बोल के कि फायदा होगा रखना है, और वो है भी नहीं वो चीज. मूर्खता हो रही है. और आप अपने पूजा घर में भी उसे रख रहे हैं.
1: सही बात है.
0: तो आप अपना पूजा भी
2: बिगाड़ रहे हैं.
1: तुम मरेलू प्राणी पूजा घर में रखो.
0: तो एक ये बहुत
2: पाप है ये.
0: हाँ, ये बहुत ज्यादा हमारी नजर में अभी आ रहा है. तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता अगर हत्ताजड़ी नाम से कुछ बिकता मिले तो ना करे. जब खरीद नहीं होगी तो लोग बेचना धीरे धीरे कम कर देंगे. पर जब खरीद तभी नहीं होगी जब लोगों को पता चलेगा कि हम क्या खरीद रहे हैं. तो वो हमें जानना,
2: रोकना है.
0: रोकना है और समझना है कि ये चीज नहीं खरीदनी है. जब हम बोलेंगे हम ये नहीं लेंगे तो बेचने वाले मारेंगे नहीं और बेचेंगे नहीं. तो ये जो हत्ताजड़ी का जो खरीदना है उसको हमको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं.
1: तो आ डॉक्टर कुमुदिनी, मारे ये जानवू तो कि खरेखर અનુકૂળ આવે એવું વાતાવરણ કયું હોય, ઉસકો કહાં રહેના ચાહીએ?
0: ગો सबसे अच्छी बात है कि हर तरीके की, गुजरात का सारा जो भूगोल है उसके लिए अच्छा है रहने के लिए। जो डेजर्ट वैली है, जो डेजर्ट मॉनिटर, वो कच्छ के एरिया में रह सकती है, कच्छ से इधर नहीं रह सकती, मतलब जहां शुष्क जो हमारा क्लाइमेट होगा,
1: सूखा
0: रहेगा वहां रहेगी। और जो

0: ये बंगाल मॉनिटर है वो सूखे में भी रहती है, झाड़ी में भी रहती है,
1: पानी में भी
0: पानी
1: रहती है।
0: के पास भी रहती है। पानी में स्विम वैसे नहीं, मतलब ऐसे तैर नहीं पाएगी, पानी के आसपास रहेगी। आपके जंगलों में भी रहती है और घरों के आसपास भी, जहां उसको थोड़ा सा नमी भी मिलेगी वहां भी रह जाएगी।
2: એટલે અમે તો નાના હતા ત્યારે એ રીતે જોયેલું કે ખેતરોમાં એની જે વાડ બોર્ડર હોય એ ત્યાં એની કાંટાની નીચે એનું દર બનાવેલું હોય,
0: ક્યુકી વહા પે ઉસકો સબ કુછ મિલ રહા હૈ, આપકા ઉંદર મિલ રહા હૈ, ખાને કો મિલ રહા હૈ, રહેને કો મિલ રહા હૈ, પાણી મિલ રહા
2: હૈ, સસલા મળી જાય એને,
0: હા, તો વહા ઉનકો ઘર બના કે બચ્ચે દેને મે બહોત અચ્છા રહેગા, બચ્ચો કો પોષણ वहां मिलेगा
1: और सेफ फील करेंगे ना।
0: और दूसरी बात है कि इतना ज्यादा कृषि में आने का एक और वो है कि हमने अपना विस्तार बढ़ा दिया है, जंगल हमने थोड़े से कम, ये जैसे जैसे हम अपना विस्तार बनाएंगे उनका विस्तार कम होगा, तो जहां जंगल इन्होंने भी अपने आप को फ्लेक्सिबल अडाप्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं कि अपने आप को
2: अनुकूल
0: उस हिसाब से बना लिया है कि हर जगह रह सकती है, तो जो आपको ये बड़ी वाली मोटी वाली गो दिखती है वो हर जगह मिल जाएगी। और ये उसके लिए भी अच्छा है, जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है वो अपने आप को उसका अनुकूल व्यवस्था भूगोल के हिसाब से बदलती जा रही है। पर ये चीज हम डेजर्ट गोह के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको रेगिस्तान का ही इलाका चाहिए रहने के लिए,
2: शुष्क, तो रेती वालों सूखो विस्तार जिए, दर करीने अंदर,
0: हाँ, वो आपके गीले में नहीं रह सकती है, उसको सूखा ही क्षेत्र चाहिए।
2: તો ડોક્ટર કુમુદની એને ખોરાકની રીતે એનું આખું જીવન ચક્ર કઈ રીતનું હોય છે,
1: એનું આયુષ્ય કેટના હોય?
0: ઇસકા 15 સે 16 વર્ષ આયુષ્ય રહેતા હૈ, યે 2 સે 3
2: ઓર પૂરા જીવન ચક્ર,
0: हाँ पूरा जीवन चक्र, जब से अंडे से निकलते हैं 15 से 16, ऐसा माना गया है कि 15 से 16 वर्ष तक रहती हैं, और 5-6 साल में वयस्क हो जाएंगे छोटे बच्चे रिप्रोडक्शन करने के लिए, नया साथी ढूंढने के लिए हो जाते हैं, और अकेले ही रहते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं है कि एक एक साथ रहते हों, अपना अपना इनका रेंज है। बट हाँ, फिर से विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक नया कार्य अपना सकते हैं कि इसका होम रेंज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो ज्ञात नहीं है।
2: अच्छा, એટલે એનો ઘરનો વિસ્તાર કેટલો છે ખબર
1: નથી।
0: हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे शोध हो सकता है कि गुजरात में गुजरात की गोह का कितना घर का फैलाव है, कितना अच्छा, दूर तक चलती है,
2: એનો રહેવાનો વિસ્તાર કેટલો છે, કેટલા વિસ્તારમાં એ શિકાર કરવા ફરે છે, હજી સુધી ખબર નથી પડી।
0: इतनी बड़ी छिपकली होने के बावजूद हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है कि कितना दूर जाती है, कितना चलती है, एक अपने कार्यकाल में एक ही मादा के साथ रहती है या दो मादा के साथ रहती है।
2: सही बात,
0: ये सारी चीजें हमें अभी भी खबर नहीं है।
2: नर मादा साथे रहे छे, नथी रहता, एक साथे रहे छे, बे साथे रहे छे, ये भी खबर नहीं
1: खबर है।
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है विद्यार्थी जो गुजरात के हैं, जो लोग बायोलॉजी में काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है कि इस शेड्यूल 1 जो हमारा जानवर है इसके ऊपर काम करें, काम करके बचाएं, काम करके जानें, क्योंकि विख्याति भी मिल सकती है कि आपने पहचाना कि अच्छा ये गोह का ये विस्तार है, ऐसे रहता है, ऐसा दिखता है, ऐसा बर्ताव करता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके भूगोल, जैसा गुजरात का जो अनूठा भूगोल है, इसके हिसाब से यहाँ की गोह थोड़ा अलग बर्ताव करें, तो उसको भी उसको बाहर लाने का पूरा, अभी हम बोलेंगे गुजरात के विद्यार्थियों के कंधों पे है।
2: એટલે તું ખાસ કરીને અપીલ કરી દે વિદ્યાર્થી શ્રોતા મિત્રોને, યુવાન મિત્રોને, ખાસ કે એનાથી ગભરાય નહીં, હવે એ ઝેરી નથી એ તો નક્કી જ થઈ ગયું।
1: સાચી વાત છે, બહોત अच्छी माहिती दी, बहुत सरस माहिती आपी, खूब खूब आभार, नमस्कार, धन्यवाद,
0: नमस्कार,
2: खूब सरस माहिती मिली बेन, धन्यवाद, नमस्कार,
0: धन्यवाद।
1: મિત્રો, હજી તો ગો વિશે ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે, પણ તે હવે આવતા રવિવારે સાંજે 6:30 વાગે
2: જાણીશું, કારણ આજે રજા લેવાનો સમય થવા આવ્યો છે। હા, તમારા વિસ્તારમાં પણ આવું કોઈ ખાસ પ્રાણી પંખી હોય તો તમારી બીએમસીના સભ્યને કે અમને ચોક્કસ જણાવજો।
1: એ માટે ફોન નંબર તો જાણો છો,
2: 94-276-065-96, અને પત્ર લખવા સરનામું પણ જાણો છો,
1: જૈવિક વિવિધતાનું જતન,
2: ગુજરાત રાજ્ય બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ,
1: અરણ્ય ભવન,
2: બી વિંગ,
1: 5મો માળ,
2: સેક્ટર 10, ગાંધીનગર।
1: તો જૈવિક વિવિધતાના જતનમાં અમને સાથ આપજો અને સૌને ગૌરવથી કહેજો।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश

0: के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है हास्य नाटिका कंगन। लेखक है ब्रिज मोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।
1: अरे वाह, आज किस भले आदमी का मुंह देखा है सुबह सुबह। सच, आज तो तकदीर जोर मार रही है मेरी। ये सोने का कंगन, ओह, इस तरह बड़ा मिला। हाय मुरारी लाल, किसी ने देखा तो नहीं?
2: कमाल है, आप हैं तो अकेले
1: जी,
2: फिर भी बातें किए जा रहे हैं। यहाँ तो कोई मुरारी लाल है नहीं, ना कोई मुरारी लाल है
1: जी। मुरारी लाल मेरा अपना नाम है।
2: अच्छा?
1: और अगर मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है?
2: मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखिए बात यह है कि आदमी अपने आप से बातें कब करता है बताऊं?
1: कब करता?
2: जब वो परेशानी में हो। हाँ। या ज्यादा खुशी में, या फिर
1: पागल हो, यही कहना चाहते हैं ना?
2: अरे नहीं मुरारी लाल जी, आप तो बुरा मान गए, नाराज होने लगे। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि आप अकेले ही बातें कर रहे हैं तो पूछ लिया कोई खास बात है।
1: अरे वाह, आप देखो मैं, अरे जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम, क्या मतलब है आपका है? अरे आप अपना रास्ता देखिए।
2: देखिए वो आपसे मतलब जरूर है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं ना। आपको कोई चीज मिल गई?
1: चीज कुछ तो नहीं मिला मुझे, कुछ भी तो नहीं।
2: कैसे नहीं मिला कुछ
1: जी?
2: मैंने अभी देखा है।
1: क्या देखा?
2: आपने जमीन से कुछ हटाकर अपनी जेब में रख लिया
3: जी। मैंने भी देखा है।
1: आपने भी देखा है? तो क्या आप दोनों ने देख लिया?
3: तो क्या अंधा समझते हो
1: हमें?
3: बोलो क्या उठाया अभी अभी जमीन से?
1: जी बात ये है कि वो कंगन
3: देखें।
2: ये तो है सोने का
1: जी। हाँ।
2: एकदम असली सोने का है,
3: बिल्कुल नया लगता है। चलकर
2: पुलिस थाने में जमा कराना चाहिए। ये मतलब आप कहा?
1: क्या कह रहे हैं आप?
2: धीमे बोलिए, धीमे बोलिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर किसी ने सुन लिया तो भाई लक्ष्मी लौट जाएगी।
3: तो क्या करना चाहिए फिर?
2: अरे करना क्या चाहिए, तो क्या नाम है, दुलारी लाल जी? नहीं मुरारी लाल जी, ऐसा है कि मुरारी लाल जी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। सोने के कंगन का जो आपको मिला है
1: करना क्या चाहिए? अरे मुझे मिला है इसलिए मेरा हुआ, आप लोग बीच में बोलने वाले कौन होते हैं भाई?
3: क्या कहा, क्या कहा, कौन होते हैं हम लोग
1: जी?
3: और आप कौन होते हैं जी? मिली हुई चीज को पूरा हथियार।

0: धीमे
1: बोलिए, मैं तो धीमे बोल रहा हूँ।
0: आप अकल से काम लीजिए, अकल से।
1: अरे भाई तो मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए ना।
0: करना क्या है, कहीं एकांत में चल करके कंगन में से, मेरा मतलब अपना अपना हिस्सा बांट
2: ले। जी जी जी जी जी, क्या क्या क्या क्या क्या कहा आपने, अपना अपना हिस्सा। जी आप लोग इसमें कहाँ से हिस्सेदार हो गए भाई। अरे मिला तो मुझे, आप लोग अपना रास्ता देखिए, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है।
3: साहूकारी की है आपने। अरे तेरी क्या अकल घास चढ़ने चली गई है।
0: देखिए शोर मत मचाइए।
1: मैं कहाँ मचा रहा हूँ।
0: अरे आप तो नाराज होने लगे
3: जी। अगर कंगन में से हिस्सा बांटने को तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं अभी पुलिस को खबर किए देता हूँ।
0: आप तो बस पानी की तरह उबलने लगे। जरा मुरैलाल को सोचने समझने का मौका तो दीजिए। कहिए कहिए, वो क्या नाम है,
1: मुरारी लाल जी।
0: मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा
1: जी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: अरे भाई हम लोग तीन हैं
1: जी।
0: आपको कंगन तीन हिस्सों में बांटना पसंद है या फिर किसी चालाक बंदर को हिस्से बांटने के लिए नियुक्त किया
1: जाए? मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, मगर हम बांटेंगे कहाँ?
3: ये हुई ना कोई कायदे की बात, चलकर बगल वाले पार्क में बांट लेते हैं।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हिस्सा हिस्सा ईमानदारी से बांटा जाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जल्दी कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है।
0: अच्छी बात है, चलिए फिर चलिए उधर।
1: चलिए आइए ना, आप भी आइए।
3: हाँ चलिए
1: बैठिए।
0: हाँ तो मुरारी लाल जी,
1: जी
0: आप ही बताइए कि इस कंगन का बंटवारा कैसे किया जाए।
1: आप ही लोग बताइए ना।
3: हमारी समझ में तो एक बात आती है,
1: क्या,
3: कि इस सुंदर कंगन को काट कर बांटना बेकार है।
0: तो फिर क्या किया जाए?
3: देखिए ऐसा कीजिए कि ये पूरा का पूरा कंगन आप लोग मुझे दे दें, और बदले में मुझसे 200 रुपए ले लीजिए। अपने हिस्से के बदले में आप लोग ये रुपए आधे आधे बांट लीजिए।
0: तो बड़े चालाक बनते हैं, जैसे हम लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं।
3: इसमें मूर्खता की क्या बात है?
0: अरे
3: आप लोगों को फोकट में 100-100 रुपए नहीं मिलेंगे क्या?
0: कहिए हम लोगों को 100-100 रुपए और आपको 200 रुपए में पूरा कंगन है।
1: मैंने कंगन पाया है।
0: गलत बात नहीं कह रहा,
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरी समझ में तो ये आता है कि सराफा बाजार में चलकर इसे 3 बराबर हिस्सों में कटवा देते हैं, फिर अपना अपना हिस्सा लेने में सहूलियत रहे।
3: ये भी कोई अकलमंदी की बात कर रहे हैं, वहां जाकर फंसना है क्या?
0: मुरारी लाल जी बात तो सही है, अकल से काम लीजिए।
1: भाई तो कीजिए,
3: उपाय एक ही है, ये कंगन मुझे सौंप दीजिए, बेच दीजिए।
0: लेकिन आप तो 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी।
3: चलिए अगर आप 200 रुपए कम समझते हैं तो मैं ये 50 रुपए और बढ़ा सकता हूँ।
1: कमाल है, आज ही आप 250 रुपए में सोने का कंगन खरीदना चाहते हैं?
3: देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है, 300 रुपए में आप दे दीजिए और ये कंगन ले लीजिए, हम मुरारी लाल 150 बांट लेते हैं।
0: क्या कह रहे हैं जी आप, सिर्फ 150 रुपए में हाथ से सोने का कंगन चला चले दो? कहाँ 150 रुपए और कहाँ ही सोने का कंगन, इतना बुद्धू नहीं हूँ मैं जितना आप लोग समझ रहे हैं।
3: देखिए भाई मुरारी लाल जी, की अगर आप ये सोचे की इस जरा से कंगन में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे तो मियाँ ये मिलने से रहे।
1: इसे आप जरा सा कंगन कहते हैं
3: और क्या?
1: अरे सोने की चीज है, जरा सी तो होगी ही, कोई किला 2 किलो की थोड़ी होगी। अरे मैं 150 रुपए में ये कंगन हाथ से हरगिज नहीं जाने दूंगा।
3: ये मत भूलिए मुरारी लाल जी, ये कंगन आपको रास्ते में पड़ा मिला है और इस पर हम दोनों का भी बराबर का हक बनता है।
1: रास्ते में पड़ा मिला है तो इसके मायने ये नहीं है कि आप लोग इसे सस्ते में हथिया ले।
0: देखिए आप लोग धीरे बोलिए।
1: मैं तो धीरे
0: में अच्छे अच्छे खेल बिगड़ जाते हैं, झिक झिक मत कीजिए। मैं इस कंगन के 400 रुपए दे सकता हूँ, वो तो आज मेरी सैलरी मिली है इसलिए पैसे पास में है। आप लोग अपने हिस्से में 200-200 रुपए बांट लीजिए।
3: हाँ ठीक है, हम लोगों को ये मंजूर है, निकालिए आप 400 रुपए, हम लोग बिना किसी झंझट के 200-200 रुपए बांट लेते हैं। मुरारी लाल जी आप कंगन इनको सौंप।
1: जी नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। जाएगा और मेरे हाथ से ये कंगन सिर्फ 200 रुपए में निकल जाए, ये नहीं हो सकता।
4: देखिए मुरारी लाल जी, मेरे 400 रुपए कम है तो आप ही बढ़ाकर दाम बोल दीजिए, हम लोग खुशी खुशी दो भागों में बांट लेंगे।

0: भाई साहब ठीक है नहीं?
1: हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: आप ये रख लीजिएगा ये कंगन।
2: हाँ ये हुई ना कोई बात है, मैं तो इस कंगन के 500 रुपए दे सकता
0: हूँ। 500?
2: उन 500 रुपए में सिर्फ आप दोनों का हिस्सा रहेगा। आप लोगों को इस सौदे में कोई एतराज तो नहीं है?
1: चलिए हमें कोई एतराज नहीं है, हम लोग 250 रुपए खुशी से बांट लेंगे।
0: चलिए आप कह रहे हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये कंगन आप ही रख लीजिए, आप तो बस जल्दी से 500 रुपए निकालिए।
2: लेकिन लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 200 रुपए।
1: तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें। आप अपनी सोने की अंगूठी
2: जी
1: और ये पुरानी घड़ी साथ में दे दे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे।
0: ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिए, देर करने से काम बिगड़ सकता है ना।
2: अच्छी बात है, ये लीजिए 200 रुपए, और ये लीजिए घड़ी
1: और वो अंगूठी,
2: और ये निकल नहीं रही है,
0: लाइए मैं निकाल।
2: ये लीजिए, ये रही अंगूठी। देखिए आप लोग आपस में झंझट मत कीजिएगा, बराबरी से अपना हिस्सा बांट लीजिएगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
0: सुनिए सुनिए,
2: कहिए कहिए।
0: नमस्ते
2: नमस्ते।
3: ठीक ही कहा है, देने वाला जो देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। अरे फूल कली कहा हो?
4: अरे चूल्हे में।
3: अरे
4: क्या बता, तुमसे तो शादी करके मेरी सारी जिंदगी चूल्हे में ही मिल गई।
3: अरे
4: क्या हुआ, ले आए सारा सामान?
3: फूल कली अभी घर गृहस्थी के सामान की बात मत करो।
4: अरे क्यों ना करूं, घर में कुछ बचा नहीं है, कल से उपवास करना है क्या?
3: अरे नहीं फूल कली।
4: फिर क्या, कल के लिए घर में आटा चावल कुछ भी नहीं?
3: अरे ना सही फूलकली, मेरी बात तो सुनो, तुमने जो वो 200 रुपए एक सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का?
3: अरे फो, मेरी पूरी बात तो सुनो फूलकली।
4: अरे क्या खाक सुनो तुम्हारी बात, फिर कटवाया है जेब?
3: अरे नहीं फूलकली नहीं, आज मैं कुछ खो कर नहीं कुछ पा कर लौटा हूँ।
4: अरे क्या मतलब, कुछ साफ साफ तो बोलो।
3: अरे आज मुझे बड़ी कीमती चीज हाथ लगी है, ये लो देखो।
4: अरे ये तो सोने का कंगन है।
3: हाँ।
4: और सुनो वो दूसरा कहाँ है?
3: एक ही है,
1: किसी से कहना नहीं भूल कली।
4: अच्छा?
1: रास्ते में पड़ा मिला है।
4: लेकिन सोना मिलना तो शुभ नहीं होता है। सुनो इसमें से कुछ हिस्सा दान करना।
3: देखो फूलकली, इसमें से कुछ हिस्सा तो मैं पहले ही दान कराया हूँ।
4: अच्छा,
3: अब तुम इसमें से चुपचाप अपना मंगल सूत्र बनवा लो।
4: हाँ,
3: और फिर मुझे कभी ताना मत मारना कि इतने साल शादी की हो गया और मंगल सूत्र नहीं बनवाया।
4: हाँ मैं सब समझती हूँ जी।
3: हाँ,
4: सुनो चलो अभी अभी अपन बाजार चलते हैं। और सुनो वो जो सब सामान तुम्हें लिखवाया था ना वो सब ले।
3: लेकिन 200 रुपए जो तुमने सामान लाने के लिए दिए थे ना?
4: हाँ हाँ, क्या हुआ उन रुपयों का, मैं तो इस कंगन की खुशी में सब भूल ही गई।
3: हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। और वो तुम कह रही थी ना कि मिले हुए सोने का कुछ हिस्सा दान कर देना। हाँ, चाहिए। हाँ, तो मैं दान कराया वो रुपए,
4: पूरे 200 रुपए।
3: हाँ फूलकली, पूरे 200 रुपए, और साथ में अपनी घड़ी और अंगूठी भी दे आया।
4: भगवान, अरे वो कैसे?
3: बात ये है फूलकली कि जब मुझे ये कंगन मिला ना तो दो लोगों ने मुझे उठाते देख लिया।
4: अच्छा,
3: इसलिए उनका हिस्सा छोड़ना पड़ा।
4: हाय राम, तुमने ये क्या किया?
3: क्या हुआ?
4: हाय, वो तो मेरी माँ की निशानी थी और तुमने मिटा दी। हाय हाय, वो थी उनकी आखिरी निशानी।
3: अरे उनकी आखिरी निशानी तो तुम हो फूलकली।
1: फिक्र मत करो, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये कंगन कम वजनी नहीं है।
3: अरे मैंने बस सोच समझ कर सौदा किया है।
1: चलो चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: अच्छा,
1: तुम अपनी पसंद का मंगल सूत्र बनवाना। देखो जल्दी से, जल्दी से आया, जल्दी से, देर नहीं कर।
2: इधर निकला फूल गली, इधर निकला, बैठो बैठो। नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार।
2: हम ये कंगन लाए हैं, इसे देखकर ये बताइए कि इसमें सोना कितना है।
4: ठीक है, कल तक मैं मंगल सूत्र का डिजाइन पसंद
2: पसंद करो पसंद करो। देखो देखो देखो,
0: ये कंगन ये कंगन आपके पास कहाँ से आया?
3: जी, कहीं से नहीं, ये तो हमारा है, क्या भूल गई?
5: हाँ सेठ जी, ये तो हमारा है, हमारा।
3: जी
0: मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये कंगन किसका है।
3: फिर क्या पूछ रहे हैं?
0: मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कंगन आप लोगों के पास कहाँ से आया?
3: देखिए,
0: क्योंकि ये कंगन सोने का नहीं है
3: जी।

0: अगली गंगा ना गए।
1: अरे मैं
0: तुम कभी नहीं सुधरोगे।
1: बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया था उन बदमाशों ने। अरे मैं लुट गया रे, वो शैतान मुझे लूट कर ले गया रे। अरे मैं बर्बाद हो गया भूल गली।
2: अभी आपने ब्रिज मोहन की लिखी हास्य नाटिका सुनी कंगन। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये हास्य नाटिका आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से। आवाज विशाल मिश्रा की थी, गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा के ही थे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म फाइटर से, आवाज़ें विशाल शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी मौलिक थी। गीत के बोल कुमार, मेलोडी और विशाल ददलानी के थे। संगीत विशाल और शेखर का था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
1: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ी

0: के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणा घाट यानी पश्चिम बंगाल में अपने किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

0: जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।
1: जब से

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं, हाय कितनी प्यारी लग रही है ना।

अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका है तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

0: दोस्तों बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।
1: कौन?

1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से प्यार रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: मासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेते रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely traveled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ओशित जाना।
1: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by ओशित जाना।
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में आबद्ध है।
1: Ritam Sarkar begins his guitar recital with rag malkos. With alap, jor and jhala, the composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम सरकार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आवत है।
1: You are listening to Rag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kahrwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शर्का से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औषित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रितम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय औषित जाना। And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अंधा

0: और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2000